को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बायनेट अब सब कनेक्टेड

0: अदकहरू कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिभ होल विथ बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिभ र कुकी छ है नाइस
0: अदगुरी।

राम राम सन्जेक 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर म शालिक राम चौधरी राम राम। घोराई खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिका लघु नेतृत्वमा महिला उपाध्यक्ष बाहेक अध्यक्ष ध्रुव केसी सहितका प्यानल विजय होरल काल हुलक निर्वाचनको मतगणना सम्पन्न हुलसँग केसी सहितका प्यानल विजय हुलक मुख्य निर्वाचन अधिकृत निर्मल गौतम जानकारी दिएरल सम्पन्न मत परिणाम अनुसार अध्यक्ष पदमा ध्रुव केसी 2593 मत सहित विजय होरल कलसे उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी किशोर कुमार आचार्य 680 मत प्राप्त गरिरहल प्रत्याशी सुमन शर्मा 155 मत प्राप्त गरिरहल वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरतमणि पाण्डे 1916 मत प्राप्त गर्दै विजय होरल कलसे उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी यशोदा पाण्डे 1228 मत प्राप्त गरिरहल उसका महिला उपाध्यक्षमा खुमा कुमारी खड्का 1361 मत प्राप्त विजय सही मत सहित विजय होरली कलसले उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी निराजा पोखरलसे 1227 मत प्राप्त गरिरहले महिला उपाध्यक्षका औरो प्रतिद्वन्दी कमला लम्सालसे 545 मत प्राप्त गरिरहले समितिका सचिवमा पद्म धर्मेन्द्र श्रेष्ठसे 2339 मत सहित विजय होरली कलसले निकटतम प्रतिद्वन्दी दिनेश ओली 842 मत प्राप्त गरिरहल उसका कोषाध्यक्षमा पद्म टीकाराम ओली 1433 मत सहित विजय होरल कलसे निकटतम प्रतिद्वन्दी दिनेश आचार्य 1117 मत प्राप्त तथा और कोषाध्यक्षका प्रत्याशी पहलमान थापा 570 मत प्राप्त गरिरहल खुल्ला सदस्य हो 2018 मत सहित चूर्ण बहादुर ओली 1602 मत सहित नीरज कुमार कार्की तथा 1534 मत सहित नवीन पोखरेल विजय हुइलखुइट महिला सदस्य पद्म बिन्दु पाण्डे 2054 रेखानी पाण्डे 1869 उषा देवी थापा 1694 मत प्राप्त गरिकन विजय होरल। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति शिवहरि मरठासे लिखित दाङ महिला लघु काव्य संग्रह आज दाङमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिकन लोकार्पण गरिगिल बा राप्ती साहित्य परिषद तथा सर्वोदय वाचनालयका आयोजना महिला एक कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नारायण प्रसाद शर्मासे दाङमा महिला लघु काव्य संग्रहको लोकार्पण गर्लखुइट कार्यक्रममा वक्ताको नक्से नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति रहवेर ओ दाङ बसाईको क्रम आपन भोग गए अनुभूति दाङको सम्भावना ओ चुनौती लगायतका विषयमा वस्तु लघु काव्य संग्रहमा संग्रहित कैकन महत्वपूर्ण योगदान करल कति लेखक पूर्व उपकुलपति हन धन्यवाद करल प्रलह सर्वोदय वाचनालयको उपाध्यक्ष चन्द्रराज पन्तको अध्यक्षता तथा वरिष्ठ पत्रकार नारायण प्रसाद शर्माको बरपहुनामा सम्पन्न कार्यक्रममा दाङ महिला लघु काव्य संग्रहको समीक्षा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर केशव सुवेदी ओ किशोर चन्द्र गौतम करल रह कार्यक्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व कुलसचिव जगत प्रसाद उपाध्याय लेखनाथ आचार्य टीकाराम उदासी सुदन कुमार शर्मा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदी साहित्यकार पुरूषोत्तम खनाल श्रीधर मजगुइया सुषमा शर्मा घिमिरे भागवत शर्मा लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरल रह। गढ़वा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सामाजिक सुरक्षा लाभ ग्राहक बायोमेट्रिक भेरिफिकेशन तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम आज सम्पन्न हो रहल गढ़वा गाउँपालिका पंजीकरण शाखाका आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न सेवा गराएको नकला बायोमेट्रिक भेरिफिकेशन प्रक्रिया तथा राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकताबारे जानकारी प्रदान करगिल रह वडा नम्बर 1 वडा अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सेवा ग्राहकको सहजता तथा सेवा प्रवाहन प्रभावकारी बनाई आवश्यक जानकारी देखिलक जनागिल्बा कार्यक्रममा बोल्ती वडा अध्यक्ष अधिकारीसे सामाजिक सुरक्षा सेवा वितरण हन थप व्यवस्थित पारदर्शी ओ प्रभावकारी बनाएकला बायोमेट्रिक प्रणाली आवश्यक रहेको बटुवा राख्ल उहाँसे वास्तविक लाभ ग्राहीसेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहज रूपमा पुगोस्कना उद्देश्यसे बायोमेट्रिक भेरिफिकेशन प्रक्रिया लागू गरिगिलक सेवा ग्राहकको नक्ला कौन समस्या निहोस् कैकन
गाउँपालिकाले अभिमुखीकरण मार्फत आवश्यक जानकारी प्रदान गर तिलक बटवारखल वडा अध्यक्ष अधिकारी सुर राष्ट्रिय परिचय पत्र हन राज्यको महत्वपूर्ण अभिलेखको रूपमा उल्लेख गर्दै सक्कु नागरिक हन समयमा जो परिचय पत्र बनाई आग्रह समेत गरिरखल गढवा गाउँपालिकाले सेवाग्राहीको नक्ला सहसेवा उपलब्ध गरिन उद्देश्यले विभिन्न वडामा असिन अभिमुखीकरण तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै अहिलेक जनाखल ओ लमही नगरपालिका आठ सुदवरियाक किसान पाचक समय हाइब्रिड कोक्निक बिया उत्पादन हो आकर्षित हुईलबाट बेमौसी समयमा हाइब्रिड कोक्निक बिया उत्पादन से मजा आमदानी शुरू हुई पाछ सुदवरिया बीचका गाउँ लगायत क्षेत्रमा किसानले व्यावसायिक रूपमा कोक्निक बिया उत्पादन गर्दै आइलबाट लमही नगरपालिका आठ बीस गाउँ निवासी किसान हरिराम चौधरीले दुई बिघा जग्गामा हाइब्रिड कोक्निक बिया उत्पादन गर्दै आरल प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना लागू हुलपाछ हिउँदको भाँचो रहना जग्गामा कोक्निक खेती शुरू करलक चौधरीले पाछको दुई वर्षसे हाइब्रिड रामपुर कम्पोजिट कोक्निक बिया उत्पादन गर्दै आरल भुइठा ताजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अपरह काल सन्ध्याफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन्न सिक्ने बाटी अखसर खबर अंश समाचार कक्षको सबको संग्रहसँग नेशालिक राम चौधरीफे विदाई टू रिजी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोखा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हाड़ जोड़नी, नसा, प्रसूति, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, बाल रोग, थायराइड, प्रेशर, सुगर, छाती, मुटू, नाक, कान, घाटी, टाउको, गैस्ट्रिक अल्सर, फिजियोथेरापी, दूरबीन, विधिवार ऑपरेशन।

0: तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल मा आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम चाङ चेक यति बेला रात्रि को 9 बजे को

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।